सुप्रभात श्रोताओं, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है मंगलवार, शक संवत 1948, आषाढ़ महीने की 16 तारीख और अंग्रेजी वर्ष 2026 जुलाई महीने की 7 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हो चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं हमारी आज की पहली सभा।

0: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की 28

0: 500 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी जानते हैं आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। सुबह 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ठीक 7:05 पर आप सुनेंगे आज का दिन हेल्थ प्रोग्राम, आप सुन पाएंगे 7:30 पर। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। शुरू की रंगोली का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:40 पर। और ठीक 9:00 आप सुनेंगे पौर आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम 9:15 पर चोइलियन गुल नेबम और उनके साथियों की आवाज़ में। 9:25 पर आप सुनेंगे रंगखोल कार्यक्रम साइनडी रंगखोल और उनके साथियों के आवाज़ में। जयंतिया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:35 पर इबार बस्टिंग लकियांग और उनके साथियों की आवाज़ में। 9:45 पर आप सुनेंगे बेते कार्यक्रम लेट्रो आर नम्पुई और उनके साथियों की आवाज़ में। 10:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 12:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे ठीक 1:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:05 पर आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से फिर से आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। और दोपहर 2:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और इसके तुरंत बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे शाम के 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 4:05 पर आप सुनेंगे रंगारंग कार्यक्रम विविध भारती जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब से कुछ ही देर में आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार, जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है।

0: इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं पोएम ऑफ द डे, जिसे प्रस्तुत कर रही है रिया शर्मा।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमन। द पोएम इज द बॉल पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost anyways, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. Thank you.
1: श्रोताओं, इस कविता के बाद अब पेश है कार्यक्रम आज का दिन। श्रोताओं, आज के दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज वन महोत्सव का अंतिम दिन है। हर साल 1 से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है ये। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में वनों और पेड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, वनों की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना था। वन महोत्सव का शाब्दिक अर्थ है पेड़ों का उत्सव। श्रोताओं, इस हफ्ते के दौरान देश भर में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अदालत सभी स्थानों पर बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण अभियान, रैलियां और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि जुलाई का महीना भारत में मानसून की शुरुआत का समय होता है, इसीलिए ये समय पौधे लगाने और उन्हें पनपने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसीलिए जुलाई महीने को वन महोत्सव मनाया जाता है। श्रोताओं, भले ही इस महोत्सव हफ्ते का आज आखिरी दिन है, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा ही अपने चारों ओर पेड़ जरूर लगाए। और श्रोताओं, पर्यावरण का रक्षा हमारे हाथों में ही है, इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। इसीलिए पेड़ चारों ओर जरूर लगाए और पर्यावरण का सुरक्षण भी जरूर रखें।

आज चंद्रधर शर्मा गुड़ेली की जन्म जयंती है। हर वर्ष 7 जुलाई को ये तिथि मनाई जाती है। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और इतिहास में उनकी अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। उनके पिता महामहो उपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री हिमाचल प्रदेश के कंगारा जिले के गुलेर गांव में मूल निवासी थे, इसीलिए उन्हें गुलेरी कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही कम लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली रचनाएं लिखी है। उनकी एक कहानी उसने कहा था को हिंदी साहित्य की मिली का पत्थर और कुछ विद्वान द्वारा पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रमुख कहानी उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, देवकुल, मारे सी माही कटुआ। उन्होंने विशेष कहानियां और निबंध लिखकर हमारे देश में एक विशेष छाप छोड़ा है, इसीलिए आज का दिन उन्हें समर्पित है।

आप जानते हैं 7 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। राजकुमार खुरेशी ने 1616 में अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की। फ्रांस ने 1672 में नीदरलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

सन 1896 में पहली आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 1980 में आज ही के दिन स्थापना हुई। पाकिस्तान ने मीडियम रेंज मिसाइल गौरी ब्लास्टिक का 1998 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेपाल में 1990 में पूर्ण

पांच सौ रुपए के भारतीय नोट चलने की घोषणा की। इटली में 2009 में आए 6.3 तीव्रता वाले जबरदस्त भूकंप के कारण लगभग बहुत ही नुकसान हुआ।

हैदराबाद के अंतिम निमाज उस्मान अली खान का 1886 में जन्म हुआ आज ही के दिन। राजनीतिज्ञ प्यारे लाल खंडेलवाल का 1929 में जन्म हुआ आज ही के दिन। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ 1931 में। प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप वेगरकस्कर का जन्म 1956 में हुआ आज ही के दिन। बॉलीवुड अभिनेता संजय सूरी का जन्म 1971 में हुआ।

ये थी उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी जो आज ही के दिन जन्मे थे, यानी 7 जुलाई को जन्मे थे। आगे बात करते हैं आज के दिन निधन हुए उन महान व्यक्तियों के बारे में।

सिख धर्मगुरु हर किसान का 1664 में निधन हुआ। आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक महाशय राजपाल का 1929 में जन्म हुआ। आज के दिन भारत के पूर्व उपमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल का निधन 2001 में हुआ। आज के दिन बंगला लेखक लीला मजुमदार का निधन भी 2007 में हुआ। आज के दिन

श्रोता, आप सुन रहे थे आज का दिन। इसके बाद कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: आइए अब सुनते हैं हेल्थ से जुड़ी कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत कर रही है जुदीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.2 FM पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग। आप सभी का हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त चिदित। आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम नर्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है मिस्टर जमदी लुंगबे इंडिया में, जो एक समर्पित और अनुभवी पुरुष नर्स है, जिन्होंने अपनी सेवा, मेहनत और करुणा के माध्यम से अनेक रोगियों की देखभाल की है। हमारे सिविल हॉस्पिटल में अभी मेल नर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। अक्सर नर्सिंग को केवल महिलाओं के पेशे के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज पुरुष नर्स भी इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे अनेक अनुभवों, चुनौतियों, उपलब्धियों और नर्सिंग पेशे के महत्व के बारे में जानेंगे। हमें विश्वास है कि उनकी बातें न केवल जानकारी पूर्वक होगी, बल्कि युवाओं को इस सम्मानजनक और सेवा भाव से जुड़ी पेशे को अपनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हुए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो पर।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए।
2: एक्चुअली मेरा नाम है जमदी लुंगबे इंडिया में। मैं लोधी का रहने वाला है और हम स्कूलिंग किया है माउंट कार्मेल स्कूल में किया है
1: जी।
2: उसके बाद में हम कॉलेज किया हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज में। हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज का बाद में हम हायर सेकेंडरी और TTC पढ़ने का बाद में फिर ड्रॉप किया और इसके बाद में नर्सिंग प्रोफेशन में गया। मेरा डिग्री ड्रॉप करके
1: जी।
2: तो नर्सिंग प्रोफेशन में हम जाने में मैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, वहाँ में हम पढ़ाई किया। 3 साल का कोर्स GNM कोर्स है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स है
1: जी।
2: उसके बाद में हम इंटर्नशिप करके फिर वहाँ में भी एक्सपीरियंस पर्पस के लिए हम काम भी किया है 1 साल। इसके बाद में फिर आया गुवाहाटी, ऐसा में भी किया, जैसे कि NABH प्रोटोकॉल्स वाला बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में भी हम प्रैक्टिस किया है
1: जी जी।
2: उसके बाद में फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिला, अभी हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल में हम एज ए मेल नर्स काम कर रहा है।
1: तो कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे?
2: हम 2022 से अभी 2026, 5 साल हो गया मेरा कंप्लीट। 5 साल हो गया। और हम लोग, हम तो ऐसे मेल नर्स है, मेल नर्स है, ऑपरेशन थिएटर में हम अभी काम कर रहा है।
1: हाँ हाँ, ओके। सर, मैंने जैसे बोला कि हम जब नर्स बोलते हैं तो महिलाओं को ज़्यादातर बोलते हैं, तो मेल नर्स होने का एक आपने चूज क्यों किया ये प्रोफेशन? कैसा पता चला कि नर्स का एक मेल भी होता है?
2: हाँ, एक्चुअली अपना पेशेंट का ऊपर में भी है
1: जी,
2: पेशेंट का ऊपर में भी है। हाँ, कि हाँ, लोगों का आदमी का मेंटेलिटी में सब सोचता है कि नर्स है तो लड़की होना चाहिए।
1: हाँ, हाँ,
2: लड़की होना चाहिए।
1: हाँ, हाँ,
2: फिर भी प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल हाँ, हाँ, चीज में जो भी अवेलेबिलिटी है सबको बराबर होना चाहिए मेरा हिसाब से। तो हम तो कि मेरा पैशन कि मेडिकल में काम करके आदमी को सेवा करेगा।
1: हाँ, हाँ,
2: मदद करेगा आदमी का, इमोशनल हो, सफरिंग हो, सब मदद करेगा।
1: हाँ,
2: बोल के
1: हाँ,
2: हम ये प्रोफेसर चुना।
1: आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप सेवा करना चाहते हैं लोगों का थ्रू योर प्रोफेशंस। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एज अ मेल कुछ तो जब आपने काम किया एक हॉस्पिटल्स में, तब आप कोई चैलेंजेस फेस किया कि नर्सेस या फिर सोसाइटी में भी ऐसा होता है ना कि नर्सेस, जैसे आपने बोला कि लड़की होना चाहिए, तो ऐसे में आपको कुछ सुनना पड़ा?
2: हाँ, कि हर हॉस्पिटल में तो नॉट ओनली लड़का पेशेंट होना चाहिए, ऐसा बात नहीं, लड़की भी होता है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल का हिसाब में बोलने से तो ये नर्सिंग में लड़का ज्वाइन करने वाला तो इट्स वेरी अनकॉमन, यूनिक है कि लड़का ऐसा होने से कोई पेशेंट लोग को डिस्कम्फर्ट होता
1: जी जी,
2: रिफ्यूजल,
1: मना कर देता
2: है।
1: हाँ, हाँ।
2: ऐसा है. फिर भी हमारा साथ में कोलिग्स में एक फीमेल लड़की है, मैंने स्टाफ में भी है.
1: जी जी.
2: कि सब हम लोग मिलकर एक साथ काम करने से कि उसमें एक इक्वल होता है, इक्वल लड़की हो लड़का हो सब भी तो इक्वल है. इसलिए कि बीइंग ए मेल नर्स इजी नहीं है, ये इजी नहीं है.
1: यही
2: कि लड़का का नेचर और लड़की का नेचर तो
1: अलग होता है,
2: अलग होता है. फिर भी अपना प्रोफेशन का प्रिंसिपल का हिसाब से तो सब कुछ बराबर है.
1: जी जी बिल्कुल.
2: एंड पेशेंट पेशेंट भी सब कुछ फ्री होना है, फ्री फ्रेंक होना है.
1: हाँ जी.
2: सोच लो कि अपना भाई है, हमको केयर करने के लिए आया है.
1: हाँ हाँ.
2: ये सब मेंटेलिटी में नहीं रखना है पेशेंट को भी और प्रोफेशनल को भी.
1: ओके. तो आपने बोला कि ये प्रॉब्लम होता है एज अ मेल नर्स पेशेंट्स को देखने के लिए भी ना, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ जो मरीज रिफ्यूज कर दिया आपसे हेल्प लेने के लिए?
2: रिफ्यूज करा, मना करा, ऐसा भी बहुत बार हुआ है.
1: हाँ हाँ.
2: क्योंकि कोई लड़की पेशेंट हो तो लड़का आया तो वो प्राइवेसी भी चाहिए होता होगा. फिर भी डिस्कम्फर्ट फील तो हो गई है. फिर भी हम लोग तो केयर देने वाला आदमी है, अपना प्रोफेशन का हिसाब से तो हम तो मेरा फील्ड में तो करना ही पड़ेगा.
1: जी. आपको क्या लगता है कि एक नर्स में मेल हो या फीमेल क्वालिटीज क्या अच्छा होना चाहिए?
2: क्वालिटीज तो मल्टीपर्पज वर्कर तो एक्चुअली मेल नर्स को तो क्वालिटी तो है. इसमें क्वालिटी माने जो अपना गुस्सा को मेंटेन करने सकने वाला. हाँ. मेंटेन करने सकने वाला. जो आदमी का नर्वसनेस और डर होने का टाइम, बीमार होने का टाइम में वो सब मेंटेन करके कूल एंड काम करने वाला, उसको क्वालिटी बोलता है.
1: हाँ,
2: हमारा
1: हाँ,
2: प्रोफेशन ना.
1: हाँ, हाँ, हाँ.
2: तो सबको भी बराबर होना है ये तो, ऐसे मेल और फीमेल.
1: हाँ ठीक है. और ऐसा बहुत होता होगा कि बहुत स्ट्रेस भी होता होगा आप लोगों को ना, तो इस सिचुएशंस में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते होंगे आप लोगों के, तो ये कैरी करके आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, तो इस कंडीशंस को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं?
2: वो तो अपना मेंटालिटी का ऊपर में, कोई स्ट्रेसफुल वाला आदमी होता है, कोई जल्दी गुस्सा वाला होता
1: हाँ,
2: है.
1: हाँ, हाँ.
2: फिर भी ये सब सोचने से, सोच लो कि बेसिक रूट में तो हम लोग जो आदमी को केयर करने के लिए ये प्रोफेशन चुनना है, तो हम लोग स्ट्रेस होने से भी ये सब में मेंटेन करना है,
1: दिखाना नहीं है.
2: हाँ, दिखाना नहीं है कि मैनर अच्छा वाला, जो हैबिट अच्छा वाला एडप्ट करने के लिए वो एडप्टेशन सीखना है.
1: और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं कि कोई नर्स होता है,

0: तो लड़का तो हाँ जल्दी तो गुस्सा होता है,
1: जल्दी गुस्सा होता
0: जल्दी
1: है।
0: गुस्सा होता है।
1: हाँ, और किसी मरीज के साथ बहुत बॉन्डिंग होता होगा आप लोगों के लोगों का, तो उस एम्पैथी एम्पैथी ही बोल देते हैं, तो उस एम्पैथी को कैसे बैलेंस करते हो?
0: तो हॉस्पिटल में आने से तो अपना फैमिली जैसा हम लोग ट्रीट करना पड़ता है, इसमें पेशेंट और प्रोफेशनल बॉन्डिंग तो वो हमें शुरू होता है। तो सोच लो कि हम केयर करना है तो मेरा भाई हो, मेरा दीदी हो, जो भी मेरा रिलेटिव हो, सब पेशेंट तो मेरा फैमिली ही है
1: हाँ
0: हॉस्पिटल
1: हाँ
0: के अंदर में,
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: से हम लोग का बॉन्डिंग तो माने हम लोग मेंटेन कर लेता है।
1: हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जितना पेशेंट्स आता है वहाँ पे आप लोग का फैमिली मेम्बर्स जैसे ट्रीट करते हैं
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर आप तो ओटी में रहते हो, तो
0: ओटी में है।
1: ओटी में कोई कोई बहुत एंक्शियस होता होगा, एंग्जाइटी ओटी में जाने
0: होता
1: के
0: है
1: लिए।
0: होता है वो तो, कि सबको भी ऑपरेशन करेगा,
1: हाँ
0: मैं ऑपरेशन करने के बाद में मेरा क्या हो जाएगा, मैं
1: हाँ
0: मर
1: हाँ हाँ
0: जाएगा, ये
1: हाँ
0: सब बहुत एंजाइटी और एंशियस एफ्रेड होने में
1: हाँ
0: हम लोग रूट से हम लोग एक्सप्लेन करना है
1: जी
0: कि ये दवाई देने से आपको ऐसा होगा, ये दवाई देने से आपको ऐसा होगा, ये दवाई देने से, ये सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है, तब एंशियस ये सब में तो रिलीफ हो जाता है।
1: जी। और कोई होगा जो समझ में नहीं आता जो आप लोग समझाते हैं?
0: हाँ हम लोग का बीच में सब लैंग्वेज वाला है,
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम लोग जब रोटेशन में स्टाफ शिफ्टिंग में देता है कि
1: जी
0: एक्चुअली मोस्टली हाफलोंग में तो हम लोग हाफलोंग हिंदी ही बोलता है, तो बिल्कुल नहीं समझने वाला लोगों को भी हम लोग कोई किसी को बुला के समझाई देता है।
1: हाँ हाँ आप लोग हॉस्पिटल्स में रहते हैं तब तो ड्यूटी करते हो, लेकिन उसके बाद जब घर जाते हो तब सोसाइटी के अंदर इमरजेंसी भी रहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें भी आप लोग को ड्यूटी ही करना पड़ता है।
0: ड्यूटी तो करना पड़ता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम लोग यहाँ में स्टाफ भी थोड़ा कमती है,
1: हाँ हाँ
0: तो हम लोग मैनेज तो करना पड़ेगा, हॉस्पिटल तो हम लोग बंद तो करने नहीं सकेगा,
1: हाँ हाँ वो तो
0: तो
1: है।
0: पेशेंट आया तो हम लोग तो
1: हाँ
0: रहना ही पड़ेगा, यही
1: हाँ
0: है।
1: जब इमरजेंसी होता है तब भी आप लोग जाते हो?
0: हाँ हाँ
1: हाँ,
0: जाता है।
1: और सोसाइटी के अंदर भी कोई ऐसा बीमारी बीमार हो गया सोसाइटी में या फिर लोकल्स में, तो आप लोगों को डॉक्टर के जैसा दिखता है?
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ
0: कि कोई मेरा ऐसा हुआ फोन करके ये करो, मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरा रिपोर्ट ऐसा हुआ है, डॉक्टर को मिल नहीं पाया, तो हम लोग कोई सोसाइटी वाला लोग भी सब भी है, हम लोग
1: हाँ हाँ
0: कोई
1: हाँ
0: कांटेक्ट करता है हम लोग को भी,
1: तो
0: क्योंकि
1: उस टाइम में आप लोग सजेशंस क्या देते हो?
0: सजेशन तो देता है कि हम लोग तो हॉस्पिटल का बीच में तो डॉक्टर हो जो भी हो सबको क्लोज है, जैसे कि जहाँ में चाहिए अगर लैब जो भी हो डायग्नोसिस पर्पस के लिए सीटी स्कैन हो एक्सरे हो हम लोग सब कुछ बता देता है, तो डॉक्टर को भी हम लोग खुद फ़ोन कर देता है,
1: जी जी
0: कुछ प्रॉब्लम होने से ये
1: हाँ
0: प्रॉब्लम
1: हाँ
0: ऐसा हुआ वहाँ से फ़ोन करें, हम लोग इसे कम्युनिकेट कर देता है।
1: ओके ओके। और आप लोग का ड्यूटी बहुत लंबा तक चलता होगा,
0: ड्यूटी तो मेडिकल में तो हाँ
1: कभी
0: लंबा
1: कभी
0: तो
1: ज़्यादा लंबा हो जाता होगा?
0: ओवर टाइमिंग भी होता है,
1: हाँ हाँ
0: फिर भी मैंने यही प्रोफेशन चुना है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हमको करना पड़ेगा, फिर भी हाँ कभी कभी एक्स्ट्रा आवर्स भी हम लोग करता है।
1: मैंने ये पूछा क्योंकि इंसान तो थक जाता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे वापस लेके आते हो थकने के बाद, बहुत सारा काम करने के बाद फिर इमरजेंसी आ गया तो लॉन्ग शिफ्ट फिर करना पड़ेगा आप लोगों को, एनर्जी
0: हाँ
1: कैसे लेके आते हो आप लोग?
0: उस टाइम में कभी कभी हम लोग जैसे कि आदमी लोगों कंप्लेन करता है इस टाइम में थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी हम लोग आ जाता है, फिर भी हम लोग ये सोच के हम ही नहीं करने से और कोई नहीं है
1: कौन? हाँ
0: कौन है ये सोच के हम लोग अपना दीदी तो फिर करना लग जाता है,
1: हाँ हाँ
0: यही है।
1: ठीक है। और आपको क्या लगता है आजकल के जो युवा है ज़्यादातर लड़कों का, तो नर्सिंग का करियर उन लोगों तक हम कैसे पहुँचाएं?
0: ये तो हमारा जो गवर्नमेंट में जैसे कि एक फैसिलिटी हायरार्की सिस्टम होता है कि रेशियो वाइज होना तो चाहिए, एक्चुअली यहाँ में हॉस्पिटल खुला है और मेडिकल कॉलेज खुला है
1: जी
0: तो उसका हिसाब से तो नर्सिंग रेशियो तो देना पड़ता है मेरा आइडिया से, तो डॉक्टर को भी ऐसा ही होगा शायद।
1: नहीं, मेरा मतलब है कि किसी किसी का ये मानना है, जैसे हमने बोला कि नर्सिंग

0: लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है। तो ये सब अवेयरनेस करना चाहिए आपका, आपके हिसाब
1: अवेयरनेस तो
0: से।
1: करना चाहिए मेरा हिसाब से तो, क्योंकि यह हमारे असम में मेरा आइडिया से आगे में तो मेल नर्स प्रोफेशन तो एडमिशन नहीं लेता है, प्राइवेट में तो लेता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में तो थोड़ा अलग
0: हाँ
1: होता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: ये प्राइवेट में तो लेता है, फिर भी पढ़ाई करने का बाद में तो जॉब तो देता है,
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: भी एडमिशन नहीं लेता है। इसमें हम लोग हम तो सबको ऐसा अवेयरनेस तो देने मांगता है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ हाँ
1: मेल नर्स भी चाहिए होता है, क्योंकि मल्टीपर्पस वर्कर बन जाता है मेल नर्स तो, और खाली मेल नर्स को एक जगह में ड्यूटी दो ऐसा तो नहीं है,
0: जी
1: दोनों को बराबर मिला के ड्यूटी करने से बहुत हैंडल इजी से कर लेता है।
0: जी और जब से आपसे नर्सिंग शुरू किया, प्रोफेशंस एज अ प्रोफेशंस, तो आपका नजरिया कैसे बदला लाइफ का एज अ मेल नर्स?
1: नर्सिंग करियर में हम ज्वाइन करने के बाद में, हाँ, नोबेल प्रोफे ऐसे नोबेल प्रोफेशन का हिसाब से, प्रिंसिपल का हिसाब से, इसमें जैसे कि फौजी लोगों मेंटेन करता है
0: हाँ
1: अपना मैनर हो,
0: जी
1: हैबिट हो, लर्निंग सिस्टम बोलने वाला चीज़ यहाँ में हम लोग का बहुत डायनेमिक बोलेगा ना, बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें अपना मैनर को भी हो, लाइफस्टाइल भी हो, सब कुछ चेंज करने का मौका है।
0: जी तो आपका मतलब है कि आपके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए होंगे,
1: चेंजेस
0: मैनर्स
1: आया
0: वाइज,
1: है,
0: डिसिप्लिन
1: हाँ हाँ
0: वाइज।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, और लोगों से बात करने का
1: हाँ
0: तरीका
1: हाँ
0: भी,
1: हाँ हाँ
0: कैसे अप्रोच
1: हाँ
0: करेंगे,
1: हाँ हाँ
0: अगर मना कर दिया तो उसको कैसे कन्विंस
1: हाँ
0: करेंगे,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: सब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि गांव से आदमी पेशेंट आता है, बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना उन लोगों का, कि ये जो रेस्पेक्ट चीज़ होता है वो थोड़ा
1: हाँ
0: कम हो जाता है नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा कम हो जाता है। तो जब वो लोग आप लोग को अप्रोच करते हैं थोड़ा हाई टोन में, तो आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो, या फिर उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं?
1: क्योंकि ये तो हम ही एसेस करना है कि कौन सा टाइप का आदमी है,
0: हाँ
1: कि उसको नॉलेज वाला है ना नहीं है। नॉलेज नहीं होने वाला होने से तो ऐसा उल्टा पुल्टा भी बात करता है, इस चीज़ में हम लोग
0: हाँ
1: समझता है, समझ के हम लोग अच्छा से बोल देता है कि ये सब तो ऐसा है। कोई कोई लोग एकदम टिपिकल एरिया से आने वाला लोग को तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हो, जो भी कुछ भी हो, हम लोग का लेआउट का हिसाब से हम लोग पहुंचा भी देता है। ये चीज़ में तो कोई एडुकेटेड वाला आदमी होने से अलग बात है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन इसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: बस्ती का आदमी वाला लोगों आने से तो ऐसा ही बात करता है। ये चीज़ तो हर हर आदमी को टिपिकल एरिया से आने से तो यही कॉमन चीज़ है। इसमें हम लोग एसेस करना है उन लोग का स्टेटस तो।
0: और आप लोग डॉक्टर के साथ में काम करते हैं, तो टीम वर्क कितना ज़रूरी होता है आप लोग के मेडिकल टीम में?
1: केस का सबसे डिपेंड्स है कि कुछ बड़ा ऑपरेशन होता है तो हम लोग आदमी ज़्यादा चाहिए, सिर्फ छोटा ऑपरेशन है तो इतना आदमी भी नहीं चाहिए, केस का ऊपर में डिपेंड है वो
0: जी,
1: तो।
0: तो अगर उस टीम में किसी ने भी गलती कर दिया, हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे बाद में, कि अगर गलती हो गया उस टाइम पे ओटी में,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: ये
0: कैसे
1: तो
0: हैंडल
1: हम
0: करते
1: लोग
0: हैं?
1: कन्विंस करता है कि इसका गलती हो गया, कि गलती होने से भी सपोज मैं गलती हुआ तो सबको होता है कि सबका
0: हाँ
1: नाम आ
0: हाँ
1: जाता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ये इस चीज़ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना सकता है हम लोग कन्विंस करने के लिए हम लोग कोशिश करता है, कोशिश करके हम लोग ऐसे कोई भी गलती भी नहीं करता होगा, फिर भी बाई चांस
0: हाँ, बाय चांस।
1: हम आदमी हैं, हम भी कभी दिन गलती भी होता
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसमें
0: बिल्कुल
1: तो हम लोग कन्विंस करके अपोलोजी ये सब हम
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ
1: ले लेता है।
0: मतलब कि अगर एक ने गलती किया तो सबको
1: सब कुछ भी तो इफेक्ट हो गई,
0: हाँ सबका इफेक्ट होता है।
1: खाली एक गलती किया तो वही है, हम लोग भी बोल ही नहीं सकेगा।
0: हाँ ये
1: तो
0: तो
1: सबका तरफ से तो हम लोग माफी भी मांगना पड़ेगा, यही यही है।
0: ये तो सब इंस्टीट्यूशंस में होता है, लाइक स्कूल्स में भी
1: हाँ,
0: ऐसे होता है
1: खाली
0: कि
1: मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, हर
0: हाँ
1: जगह
0: हाँ
1: में ये
0: हर
1: तो
0: जगह
1: होता
0: पे।
1: ही है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जितना भी इंस्टीट्यूशन हो, जितना भी ऑफिस हो, स्कूल भी हो, जो भी हो।
0: हाँ हाँ इसके लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है।
1: हाँ।
0: हाँ सब

0: 100% देना बहुत ज़रूरी होता है।
1: हाँ
0: और अभी आप नर्सिंग तो कर ही रहे हैं, तो फ्यूचर गोल्स क्या है आपका, और क्या करना है, इसी में रहना है या फिर और भी कुछ करना है आप?
1: प्रोफेशनल का हिसाब से तो यही चुन लिया तो और क्या करेगा, यही करना पड़ेगा। और कि मेरा पैशन है, माने पैशन माने मेरा मन है ये प्रोफेशन चुनने के लिए,
0: हाँ,
1: तो यही रहेगा।
0: यही रहेगा। आप खुश है इस नर्सिंग से?
1: हाँ खुश है।
0: बहुत खुश है ना, यह सुन
1: हाँ
0: के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबका प्रोफेशंस में खुश नहीं होते हैं सब, लेकिन अपने काम में जो खुशी मिलता है वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि वर्क इज़ वर्शिप,
1: हाँ
0: तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो आदमी है, मर्द है,
1: हाँ
0: मर्द का ये नर्सिंग लेना चाहिए एज अ कैरियर?
1: लेना तो चाहिए। हम तो अवेयर टू दे रहा है कि मेल नर्स भी ज़्यादा होना है, इक्विवेलेंट टू फीमेल। जैसा कि खाली फीमेल ही कर सकता है ऐसा बात भी नहीं है, तो हम तो मेल नर्स ज़्यादा होना भी हम तो एवर मेरा तरफ से तो देने मांगता है।
0: जी। और यहाँ सिविल हॉस्पिटल, आप लोग सिविल हॉस्पिटल में कितने मेल नर्स है टोटल आप लोग?
1: मेल नर्स तो खाली दो ही है
0: सिर्फ दो है?
1: हमारा बैच का दो ही है। मेरा आइडियाज का हिसाब से तो मेल नर्स तो बहुत कम है,
0: अगर
1: खाली
0: रेशियो के
1: खाली
0: हिसाब से
1: डिस्ट्रिक्ट
0: लो तो फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट को लेके भी मेल नर्स रेशियो
1: बहुत
0: बहुत
1: कम
0: कम
1: है,
0: है।
1: कम है।
0: और आपको क्या लगता है कि मेडिकल तरफ से और भी ज़्यादा अवेयरनेस करना चाहिए इसके बारे में?
1: हाँ मेडिकल तरफ से भी अवेयरनेस देना है, और हर हायर अथॉरिटी लोगों से अवेयरनेस देना है और प्रमोट करना है, हायर अथॉरिटी को से एडवाइस देना है, और वो लोग से करने से तो सब कुछ पॉसिबल है ना।
0: आप यंग हो अभी, बहुत यंग हो, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोता युवाओं को?
1: हाँ हम मैसेज देना चाहता है कि ये नर्स खाली लड़कियों के लिए नहीं है, सब कुछ के लिए है, और मेल लुकुन भी करने से अपना करियर भी, लाइफ भी और स्कोप भी तो अच्छा है।
0: हाँ जी
1: नर्सिंग प्रोफेशन में
0: जी
1: स्कोप
0: जी
1: अच्छा है,
0: हाँ हाँ
1: तो जो भी किया वो तो आजकल तो सब कुछ बराबर है,
0: हाँ
1: इसलिए
0: हाँ
1: मेल नर्स भी मेल लुकन को हम बोले मांगता ये प्रोफेशन में चुन लो, और अपना करियर के लिए भी और लाइफ के लिए भी सब कुछ के लिए ही ठीक है।
0: जी, बिल्कुल। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़कियों
1: नहीं
0: के लिए
1: नहीं
0: नहीं।
1: ऐसा नहीं,
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: सब
0: ठीक है।
1: कुछ बराबर है।
0: ओके, आपसे बातें करके बहुत ही खुशी हुई हमें। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, आपने ड्यूटी के बाद आए हो,
1: हाँ
0: तो हम आपसे फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आए और बहुत सारा कुछ सिखाया मेल नर्स के बारे में। तो हमें आशा है कि हमारे अतिथि से हुई ये बातचीत आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होंगी। उनके अनुभवों, संघर्षों और समर्पण की बातें सुनकर नर्सिंग पेशे के महत्व को और गहराई से समझने का अवसर मिला है हमें।
1: थैंक यू, धन्यवाद जुदित जी यह
0: हाँ,
1: हमें बुलाने के लिए।
0: पुरुष नर्स की भूमिका आज स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनकी सेवा भावना, धैर्य और संवेदनशीलता समाज के लिए एक मिसाल है। ऐसे समर्पित स्वास्थ्यकर्मी न केवल मरीजों की देखभाल करते हैं, बल्कि अपने कार्य से मानवता की सच्ची सेवा भी करते हैं। हम अपने अतिथि का इस सुंदर और उपयोगी बातचीत के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और साथ ही आप सभी श्रोताओं का भी आभार करते हैं कि जिन्होंने हमें अपना समय दिया हमें सुनने के लिए। इसी आशा के साथ कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे, हम आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य से जुड़ी कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रही थी जुदित ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम और साथ ही कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में।

0: वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.
4: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
5: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने

0: डीएफसी 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

0: झुका देंगे, सारा बदन झुका देंगे।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आपको सुनवाते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

0: फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

आइए अब सुनते हैं एक कार्यक्रम सिरों की रंगोली। इस कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे हेमलता के कुछ बेहतरीन कलेक्शंस।

श्रोताओ, आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन रहे थे पौर आंचलिक बातोरी और ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आप शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा लोकगीत चोइलियंगोल नेभम और उनके साथियों के आवाज़ में।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे खेल मालो गीत चोइलियांग गोल नेइबम और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रंग कॉल कार्यक्रम के तहत रंग कॉल आधुनिक गीत साइनोडी आर बांकहेंग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रांखौल आधुनिक गीत साइनोडी आर बांकेंग और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत इबार बोस्तिंग लकियांग और उनके साथियों के आवाज में।

आप आनंद ले रहे थे जयंतिया भक्ति गीत का इबरबस्टिंग लकियांग और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप आपको सुनवाते हैं बेते कार्यक्रम के तहत बेते आधुनिक गीत लैट्रो आर नंपुई और उनके साथियों की आवाज में।

इस गीत के साथ ही स्थानीय भाषा के गीतों के कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अब आनंद ले विविध भारती के कार्यक्रम का।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल
2: इम्बैलेंस? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
2: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है। आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
2: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में और वेट रहते हैं पेशेंट, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
2: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशालता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए, किस तरह से ट्रीटमेंट।
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओवरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं। उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस वो करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक HCC टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल कुछ, ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है कई बार, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती,
1: हाँ,
0: छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो
0: जी
1: अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है,
0: जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: मुझे लगता है।
0: जी
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस ज़माने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है, प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए? किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर
0: थर्टी
1: सकते
0: फाइव
1: हैं।
0: परसेंट
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियाँ से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे,
0: जी
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
0: जी
1: गया,
0: जी
1: विटामिन
0: जी
1: डी ये
0: और
1: बोलते हैं।
0: विटामिन डी
1: हाँ,
0: धूप से
1: सन,
0: ही मिलता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: और
1: सनलाइट, हाँ
0: आजकल धूप की बहुत कमी
1: बहुत
0: है,
1: कमी
0: लोग
1: है।
0: एयर कंडीशन
1: हाँ,
0: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
1: एसी,
0: नहीं, तो धूप सेकना बहुत ज़रूरी है। धूप का ही एक गाना है,
1: हाँ
0: एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
1: हाँ
0: और गाना,
1: नहीं, ज़रूर, बहुत अच्छा गाना है।
0: तो ठीक है ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है,
1: डाइट का बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या-क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी?
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते?
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो ना
0: नहीं खाना
1: इससे, हाँ,
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के
1: फैटी,
0: लिए मुश्किल है।
1: हाँ, ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट, बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी।
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस,
1: हाँ,
0: कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: हमको, हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इनटेक कीजिए,
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़ें तो फल जरूर
1: हाँ,
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े, गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी है,
1: मीठा, हाँ,
0: नुकसानदेह
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है।
0: है।
1: और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते हैं।
1: खा सकते हैं।
0: और PCOD जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ,
0: निजात
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है, बहुत सारी चिड़चिड़, पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर, टीनेज पर, 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता
1: जल्दी आ
0: पीरियड।
1: गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़।
0: तो
1: तो
0: क्या
1: क्यों,
0: वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है, जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
0: और आपने, ये गर्भाशय में सिस्ट बन
1: हाँ,
0: जाता है ये तो,
1: गर्भाशय में
0: हाँ,
1: सिस्ट
0: तो
1: बन जाता
0: ये
1: है,
0: क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता, गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएँ रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
1: वो
0: से ठीक
1: सिस्ट
0: होता
1: तो
0: है?
1: नेचुरल सिस्ट, तो मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं। नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
0: जी,
1: होता है।
0: तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो
0: सुरमई अखियों में नन्हा
1: नन्ना
0: मुन्ना
1: मुन्ना
0: एक
1: सा
0: सपना दे
1: सपना।
0: जा रहे, सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: जी, गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा रता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है और
0: लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF, IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो परक्नली,
1: हाँ सिर बीच, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देखकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो
1: ट्रांसफर करते
0: हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। फर्स्ट तो इंजेक्शंस, मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना
1: पड़ता है? नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी। जी, तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ, होती है। PCOD में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी और...
1: हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो
0: है।
1: जाती है स्केंट भी।
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है, जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है,

0: करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ
0: यूटरस
1: खतरा होता
0: यूटर
1: है?
0: हाँ यूटराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर और इसका कैंसर हो सकता है बाद
1: जी,
0: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे निजात?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना है ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
0: हाँ
1: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
0: डर
1: ऐसा
0: बहुत ज़्यादा
1: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
1: जी
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
1: जी
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ,
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती
1: यूरिन के रास्ते से
0: है
1: सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज़ है, यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
1: जी, तो
0: हाँ
1: उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात
0: नरगिस,
1: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर,
0: हाँ
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी। जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना, बस।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल्फ परीक्षण भी कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ड तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए, और महीने में एक बार तो भी सेल्फ परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और
0: जी।
1: ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी कर
0: तो
1: मेमोग्राफी सोनोग्राफी, एपेनेसी, निडल बायोप्सी भी,
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो ज़रूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है,
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
1: मूड
0: होता है,
1: स्विंग्स होते हैं।
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका
1: बस
0: ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन ही है, शांत रहना है,
0: जी।
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए,
0: जी
1: अच्छे
0: जी
1: से किताब पढ़ो, अच्छे
0: जी
1: से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है,
0: जी
1: हॉबीज़ है कुछ, उस पर ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से,
0: जी, कुछ संदेश देना
1: क्या
0: चाहती हैं
1: रहे
0: हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है,
0: जी
1: आराम से हो जाता है सब। और
0: जी
1: जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरी मेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
0: जी
1: बाहर
0: जी
1: निकलने के लिए।
0: जी
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल
1: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
0: जी।
1: जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से, कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एल्बम का नाम है सिलसिले, जगजीत सिंह की आवाज, शब्दकार जावेद अख्तर, संगीत जगजीत सिंह का।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज़, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

आपके सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज़, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से, तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

Ai cơ. पूछे पीपल के पीले पीले पातरे, मोरे मन में है छोटी सी बात रे, मोरे मन में है छोटी सी बात रे, जो कहीं भी न जाए और सही भी न जाए, होने वाली है दिल पे कोई खातरे। आई कैसी

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजात लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज़ में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honour. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kogje and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी की अवस्था में सड़क पर भटकते हुए जब वो मदद की गुहार लगाते हैं वो एकदम जीवंत और मार्मिक अभिनय हमें लगा। अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो या जो आपको बहुत पसंद आया हो या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का ज़मीं पर, ये एक कालजयी रोमांटिक गीत है। संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमती फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी, फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम

उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देखकर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरा।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ, ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आँखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहाँ देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

0: है।
1: एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है दिलरुबा, मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पाँचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी जो इसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं, अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं, अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

दास न बन सका क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आँखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आंख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज़ आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the newspaper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
4: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
5: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
6: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज PRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच

0: भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
1: लाइक, कमेंट, आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया।
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं हम भी।
2: जी,
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं।
2: जी,
1: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: याद है जैसे आपको?
2: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
1: टेढ़ी खीर
2: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
1: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
2: जी।
1: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
2: वैसे
1: थे।
2: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
1: तो
2: थे।
1: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती है
2: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे। जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास
1: बैठ जाता है,
2: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी?
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी। ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बढ़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।

0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंक व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं। वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने

0: पीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं।
1: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
1: चलिए।
2: हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बापरे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: और
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो न देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक पहुँचाएँ
1: हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल करें।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी।
0: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है
0: जी। बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं
1: जी,
0: और कुछ लोग
1: और
0: अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो
1: जी,
0: ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया
0: का इस्तेमाल करना। और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहाँ पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहाँ भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूँगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है।

अब दीपा जी हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए हैं, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक

0: नहीं पड़ता है, और भी शॉपिंग में बहुत सारे मोल भाव करती हैं सच में, पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ,
0: अच्छा करी पत्ता भी डाल दो, वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही है। देखिए, जहाँ पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के, और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती
1: जी,
0: है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: अर्थ बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पकड़ी है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं, ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे, वो बुला तो नहीं रहा जाओ जाओ, पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा, तरह तरह के डिज़ाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में हैं लड़कियाँ और

0: मुड़ मुड़ के देख रही हूँ, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रही, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा।
1: 100 रुपए
0: आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारे कारे बादरा सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब भारत के 140 करोड़ लोग और इंडोनेशिया के 29 करोड़ लोग साझा प्रगति की दिशा में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपील खारिज कर दी। उन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को भी बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम ने अमरीका को 4-1 और स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच और रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तो वो हुआ नहीं, वीडियो कॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक स्विच।

0: मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया.
1: अच्छा,
0: सो 2-2.5 साल लग गए. उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दिया,
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए.
1: अच्छा।
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की. 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी.
1: जी।
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट, वहां पे काम किया. और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला.
1: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है और उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है.
1: हाँ,
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहाँ से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है,
1: हाँ
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहाँ पे होती है.
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे.
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ, हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: था.
1: बात है, क्या बात
0: तो आई नेवर इमेजिन एनी अदर
1: है। वाह वाह वाह
0: प्रोफेशन.
1: वाह।
0: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक
1: हाँ
0: हम करते रहते थे. 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था. और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी।
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा. तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल
0: उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई.
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया, मैं
1: जी।
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो. तो मैं
1: अच्छा
0: चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं. तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता. और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जब आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया. तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी।
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है.
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया.
1: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे, तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है. तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना
0: एक
1: है,
0: बहुत खूबसूरत सा गाना है.
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज़ काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैच इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं
0: अच्छा
1: थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफ़ी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी।
1: तो वो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला, और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीज़ों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीज़ें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया, जहाँ जहाँ मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहाँ पे मेरी एंट्री ज़्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मैं मराठी में भी नहीं हो पाऊँ, बट
0: हाँ
1: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला, और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
0: अच्छा
1: दैट इज थिंग।
0: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
1: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
0: जी
1: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
0: ओहो
1: गाना है।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए बस। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चन साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीज़ें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना
0: था।
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
0: हाँ
1: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश छाड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी,
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
1: नहीं
0: इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओहो
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी,
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ
1: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
0: हाँ
1: करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
0: जी,
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
0: अच्छा।
1: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
0: हाँ।
1: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ
1: हाँ। अरे क्या हो गया?
0: अच्छा।
1: मैंने सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
0: हाँ।
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले।
0: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
1: हाँ। बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
0: ओहो,
1: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
0: क्या बात, चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: तो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से, सत्या मूवी आई थी, उन्होंने वो सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ
1: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा
1: रणजीत कपूर सर जो अनु कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ हाँ
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
0: जी जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ। उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा
1: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई
0: अच्छा
1: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जू चलो,
0: अच्छा
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
0: हाँ
1: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
0: हाँ
1: अरे राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो।

0: फॉर मी इट वॉज लाइक गूसबम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने. मैंने तुरंत मैंने डीके आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया. ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा.
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए.
1: अच्छा.
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया. और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है. मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे.
1: अच्छा.
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं. ऐसे मैं कुछ सोच रहा था. हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे. और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
1: जी.
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे. रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है. थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट. और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है. तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे. मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है. Then he gave me that character and I worked with him. It was a beautiful experience working with him also.
1: OTT की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है. ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
0: जी.
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और OTT ऑलमोस्ट सेम है.
1: हाँ.
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की. आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी.
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है.
1: हाँ.
0: आगे और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है.
0: होना ही है
1: जी.
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है तो उस वक्त आपको पहुंचाना है. और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी. जी.
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी.
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया.
1: हाँ जी.
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं. मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का. तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं.
1: क्या बात.
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले. ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है.
1: बिल्कुल.
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है. तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया. मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला. ये मेरा पहला डेली शो था.
1: अच्छा.
0: तब तक मैं फिल्म्स और OTT ही करना चाहता था तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था. बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में. मुझे
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है.
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले.
1: हाँ.
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी.
1: हाँ, हाँ.
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया. ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं. मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है.
1: हाँ.
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा.
1: अच्छा.
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले. तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल. तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत. आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी.
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है. पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी.
1: बिल्कुल.
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो
1: अपना,
0: ऑडिशन भेज दो. सही लगा तो वो बुलाएंगे. ये पहले नहीं हुआ करता था. पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था.
1: दर दर भटकने वाली बात है.
0: बिल्कुल. हमने दर दर की ठोकरें खाई है. और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है. कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या, नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है. तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ. तो लेकिन उसका अपना एक मजा था.
1: हाँ,
0: वो सफर है.
1: अच्छा.
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो.
1: हाँ.
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब.
1: बराबर.
0: तो एक अलग मजा रहा है. अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ. स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ.
1: हाँ.
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा. बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा.
1: क्या बात. कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, क्या बात है,
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित दा ये करते हैं, सुमित दा ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ
1: जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका,
1: वागले मेरा
0: उसका नाम।
1: मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि
0: हाँ
1: जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी
1: सीनियर
0: जी
1: है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ।
1: उन्होंने

0: निकलेगा, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
1: ओके
0: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही है, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है, इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है
1: बहुत बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं।
0: जी जी जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं,
0: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ
1: जी,
0: भी।
1: जी, जी।
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता, लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूँ अंदर से, और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
1: जी
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा,
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर के थ्रू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे,
1: अच्छा
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल,
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझते हो अपन,
1: एक घूंट लेने की जो एक प्रक्रिया
0: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा ऐसा, प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली, बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं। मैं उतना जरूर समझता था कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है, इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
1: जी,
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए तो ही मजा आएगा।
1: हाँ,
0: तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आर टू आर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूँ जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना पाटेकर साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है। आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक पारिक, और उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तेरा रोज कहां से आएगा। नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे, वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं

0: आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है,
1: अच्छा
0: दिखता है बिल्कुल आपकी तरह। मैनर अच्छा,
1: अच्छा
0: मतलब किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
1: हाँ
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। मैनर अच्छा।
1: अच्छा जी जी
0: मैंने
1: जी
0: बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा
0: चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई
1: क्या
0: लाइक
1: बात
0: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
1: हाँ
0: उनको बताया कि ये वही है। ब्रो ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या
1: जी
0: करोगे
1: जी
0: आप?
1: जी ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
0: मीन
1: हैं।
0: जैसे ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी तो ऐसा ही वाकया आपके साथ हुआ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या?
0: ऐसा ही हुआ। और
1: हाँ
0: मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता
1: हाँ
0: है, एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
1: हाँ
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
1: क्या
0: है।
1: बात
0: मैंने
1: है।
0: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
1: हाँ
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, राम जी लंदन वाले, ये
1: अच्छा हाँ
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में ये हिस्सा लेते हैं
1: अच्छा
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है।
1: हाँ
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा
1: हाँ
0: है, गाड़ी रहेगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
1: हाँ
0: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मजा तो वही है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
1: क्या बात है।
0: इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा,
1: हो आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत,

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। हमारी दूसरी सुबह के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

श्रोताओं जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी अगर 6:05 पर आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में मार कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में भक्ति

संगीत पेश करेंगे ललमपुई मार और उनके साथी। जेमी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:25। इसमें लोकगीत पेश करेंगे क्यूरिंग जेमी और उनके साथी। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्या आंचलिक बातूरी लेके जाएंगे 6:45 पर। डिमासा कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00। इसमें लोकगीत पेश करेंगे गोपाल बाठड़ी। कार्बी कार्यक्रम हर रोज की तरह 7:20 पर। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत। कलाकार है सनिका मिलिकपी और उनके साथी। हुई नितिन चोंगलोई और उनके साथियों के गाए भक्ति संगीत सुनी कुकी कार्यक्रम में 7:40 पर। 8:00 होगा कृषि से जुड़ी कार्यक्रम किसान वाणी। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 9:00 आप सुन सकते हैं आपकी गीत कार्यक्रम, जिसमें आप ही के SMS और आपके व्हाट्सएप के रिक्वेस्ट पर ये कार्यक्रम आधारित है, तो जरूर सुनिएगा आपकी गीत कार्यक्रम रात के 9:00। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्र गीत।

श्रोताओं, इस समय 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में मार कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में भक्ति संगीत पेश कर रहे हैं ललनपुई मार और उनके साथी।

श्रोताओं, स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मार कार्यक्रम। इसमें भक्ति संगीत पेश कर रहे थे ललमपुई मारण के साथ ही, और इसी गीत के साथ ही हमारा आज का मार कार्यक्रम ही पर समाप्त होता है। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेमी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज लोकगीत पेश कर रहे हैं क्यूरिंग जेमी और उनके साथी।

しばらい。

하대 하이버 하래게 된 축하대

一身上不走来，江南海客的面还要脏啊脏，海岛的你不走来，吃可不，海就把。

海东海西巴拉西巴东海的，南外罗当拉姆，海千秋拉。

가르는 야장 아장으로 마그라사 남부지 시카보 해바과자이 타이가자이 인자부도 사담허런 지허런 자랑도 하이시바라이

大家，大家来弄啊！咱俩把菜刀都拍开不？那是我和老鼠花包，哎，大家。

살이가 농사네 다르네 초라우자 땅와이 땅땅땅땅 아이 자당마

하늘 봐 살아오래 여보래 하루는

아니 나 살아보 예보 나 마대네 하상자 예보상 아이 하공마

가래맨 한 야장으로 나대라 한 야장으로

ให้บทอกระเด็นให้บุคคลมาที่เรียกกระเด็นให้บุคคล

哎，大伯你不走，让你不走，哎，当伢的不当看，伢的不去看，你的看呐，那么走，大伯。

श्रोताओं, डिमासा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कलाकार थे गोपाल बाठड़ी, और इसी गीत के साथ ही हमारा आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्बी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में भक्ति संगीत पेश कर रहे हैं सोलिका मिलिकपी और उनके साथी।

श्रोताओं सुनी के हमें मिलिक पी और उनके साथियों के गाय इसी गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यवी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज भक्ति संगीत पेश कर रहे हैं हुई नितिंग चोंगलोई और उनके साथी।

श्रोताओं, होइनी तिंगचोंगले उनके साथियों के गाए थी इसी भक्ति संगीत के साथ ही आज का कुपी कार्यक्रम तथा हमारा स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम ही पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है, रात के 8 बजे हैं, 8 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषि से जुड़ी कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत हैं
1: भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
0: किसान वाणी।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हम हाजिरे किसान वाणी के एक नई कड़ी के साथ, और इस कड़ी के साथ मैं आपका दोस्त शांतनु
0: और मैं मेलेडी आप सभी का स्वागत करते हैं।
2: दोस्तों किसान वाणी के इस कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे किस तरह खीरे की खेती की जाती है इसी संदर्भ में, साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारी सी स्थानीय लोक संगीत। तो श्रोताओ देर ना करते हुए लीजिए आरंभ करते हैं आज का किसान वाणी कार्यक्रम। दोस्तों खीरे की खेती कच्ची सब्जी के रूप में की जाती है। सभी सब्जियों में खीरे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खाने में सलाद के रूप में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। खीरे में सबसे अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। गर्मियों के मौसम में खीरे का सेवन करने के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। खीरे का सेवन कर पेट संबंधित बीमारियों, दर्द और पथरी के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसे जानकारों का कहना है। इसे खाने के अलावा सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। खीरे की फसल 3 महीने में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है तथा इसकी खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, जिससे किसान भाइयों को खीरे की खेती करने में काफी आसानी होती है। यदि आप भी खीरे की खेती करने का मन बना रहे हैं, तो आइए जुड़े रहे हमारे साथ और जान ले पूरी जानकारी। खीरे की खेती किसी भी उपजाऊ भूमि में की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए।

0: शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला भी इसके खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। खीरे की अच्छी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी फसल अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकती है।
1: तो श्रोताओं, जानते हैं खीरे की उन्नत किस्मों के बारे में। स्वर्ण पूर्णिमा खीरे की ये किस्म कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल 45 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों का फल निकलता है तब उसके कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल पैदावार दे देते हैं। कल्याणपुर ग्रीन खीरे की ये किस्म सबसे ज़्यादा और कम समय में पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इस किस्म के पौधों में 40 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जब इसके पौधों में फल आना शुरू कर देते हैं तब इसके फल रोज तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खीरे की इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। हिमांगनी किस्म के पौधों को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों को तैयार हो जाने पर इसकी तुड़ाई रोज की जा सकती है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार दे देती है। खीरा 75 इस किस्म को खासकर पर्वतीय स्थानों में उगाया जाता है। इसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुड़ाई 2 दिन के अंतराल में की जाती है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 टन पैदावार दे देती है। इसके अलावा प्रिया, स्वर्ण शीतल, पूसा उदय, स्ट्रेट 8 भी कुछ ऐसे उन्नत किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया जाता है।
0: सताओ, किस्मों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं खीरे के पौधों में लगने वाला रोग एवं उनकी रोकथाम के बारे में। चूर्णी फफूंदी, खीरे के पौधों में लगने वाला ये रोग एक महीने पश्चात ही दिखाई देने लगता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये रोग पौधों की पत्तियों को नष्ट कर देता है, जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स और केराथिन की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों की पत्तियों पर किया जाता है। फल मक्खी, इस किस्म का रोग पौधे पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। ये रोग पौधे पर लगे कच्चे और पक्के फल दोनों को ही खराब कर देता है, जिससे पैदावार भी अधिक प्रभावित होती है। कार्टअप SP की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। सुंडी रोग, यह सुंडी रोग पौधों की पत्तियों को प्रभावित करता है। इस रोग की सुंडी पत्तियों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस रोग से प्रभावित पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस रोग का कीड़ा हरा और पीले रंग का होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। आद्र या बीज गलन रोग, इस सतह का रोग अक्सर जल भराव की स्थिति में देखने को मिलते हैं। इस रोग में बीज सड़कर खराब हो जाता है, जिससे बीज अंकुरण नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए मेनकोजेब की उचित मात्रा से उपचारित कर बीजों की रुपाई करनी चाहिए। अगला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ये रोग खीरे की फसल में पेडोस्फेरा जेंथी नामक फंगस के कारण होता है। किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस रोग के सफेद कलर के दाग आपको पौधे के पुराने पत्तों की ऊपरी सतह पर दिखाई देंगे। साथ ही ये रोग अधिक तापमान और ठंड में अधिक ज्यादा दिखाई देता है। डाउनी मिल्ड्यू, ये रोग खीरे की फसल में स्यूडोस्पोरोस्फेरा क्यूम्बिसिस नामक फंगस के कारण होता है। ये रोग बारिश के मौसम में अधिक प्रकट होती है और पौधे के पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले कलर के धब्बे दिखते हैं। जब आर्द्रता अधिक होती है तो ये रोग अधिक तेजी से फैलता है। कुकम्बर मोजेक वायरस, कुकम्बर मोजेक वायरस एफिडेट्स के वजह से खीरे के पौधे पर फैलता है। नई पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है और पत्तियां बारी बारी से हल्के हरे और गहरे हरे रंग के धब्बों के साथ गंभीर रूप से धब्बेदार हो जाती है। पौधों की वृद्धि कम होती है और फल उबर खबर उभारों से ढक जाते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित खीरे का फल लगभग पूरी तरह से सफेद हो सकता है। कुछ बातें खीरे की फसल के रोग नियंत्रण के बारे में। वायरस और रोग प्रतिरोधक बीज का उपयोग करें। खेत की जुताई करके मिट्टी को धूप में सुखा देना चाहिए। खीरे की फसल में रस चूसक कीड़े के नियंत्रण के लिए नील पीले स्टिकी ट्रैप लगाए। रोग आने से पहले आप नीम ऑयल, जैविक कीटक और कवकनाशक का उपयोग करें। रोगों का प्रकोप ज्यादा बढ़ने के बाद रासायनिक दवा का प्रयोग करना ना भूले। अब बातें करते हैं कोनीय पत्ती धब्बा रोग के बारे में। कोनीय पत्ती धब्बा खीरे की सबसे व्यापक बीमारियों में से एक है। ये बीमारी एक जीवाणु के कारण होती है और इसके शुरुआती लक्षण पत्तियों के नीचे की तरह छोटे पानी से लथपथ धब्बे होते हैं। ये घाव तब तक फैलते हैं जब तक कि वे पत्ती में बड़ी मध्यमिक नस द्वारा सीमित नहीं हो जाते, जिससे धब्बों को एक कोनीय आकार मिलता है। संवेदनशील किस्मों पर धब्बे एक पीले रंग के प्रभामंडल से घिरे हो सकते हैं। आर्द्र परिस्थितियों में संक्रमित उत्तकों से एक दुधिया रिसाव निकलता है। ये रिसाव सूख जाता है जिससे घावों पर एक सफेद परत बन जाती है। ये बीमारी तने, डंठल और फलों को भी प्रभावित कर सकती है। फलों की घाव छोटे और हल्के भूरे रंग के केंद्र के साथ गोलाकार होते हैं और अगर युवा अवस्था में संक्रमित हो तो फल विकृत हो जाएगा। कोनीय पत्ती धब्बा जीवाणु बीज जनित हो सकता है, रोपाई पर मौजूद हो सकता है और फसल के मलबे या शैक्षिक ककड़ी के पौधे पर खेत में जीवित रह सकता है। रोगजनक सूखी पत्ती सामग्री में 2.5 साल तक जीवित रह सकता है। जीवाणु खीरे के पौधे को रंध्र हाइड्रेथोड और घावों जैसे छिद्रों के माध्यम से संक्रमित करना है। रोगजनक पानी के छींटे कीड़ों, दूषित उपकरणों और श्रमिकों द्वारा फैलता है। जब पौधे गीले होते हैं तो रोग आसानी से फैलता है। कोनीय पत्ती धब्बा का प्रबंधन एक प्रतिष्ठित स्रोत से प्राप्त रोगजनक मुक्त बीज का उपयोग करने से शुरू होता है। साथ ही ऐसे किस्में चुने जो रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। उच्च और मध्यम स्तर की प्रतिरोध क्षमता वाली खीरे की किस्में उपलब्ध है। कम से कम 2 साल तक खेतों में गैर कद्दू वाली फसल उगाए। अपघटन की गति बढ़ाने के लिए कटाई के तुरंत बाद फसल के अवशेष को मिला दे। ओवरहेड सिंचाई के उपयोग से बचे और ऐसे पानी से सिंचाई ना करें जो जीवाणु से दूषित हो सकता है। जब पौधे गीले हो तो श्रमिकों और उपकरणों को खेतों से दूर रखें। कपर आधारित जीवाणु नाशकों का उपयोग कोनीय पत्ती धब्बा के प्रसार को धीमा करने में मदद कर सकता है। हालांकि महामारी के विकास के बाद ये अनुपयोग प्रभावी नहीं हो सकता है। जब लक्षण पहली बार दिखाई देते हैं तो उपचार शुरू कर देना चाहिए और EBDC कवकनाशी जैसे कि मेनकोजेब को जोड़ने से कपार उपचार की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी।
1: तो श्रोताओं, खीरे की खेती की इस जानकारी को हम यहीं पर एक छोटा सा विराम देते हैं और चलिए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा स्थानीय लोकगीत।

0: इस लोकगीत के बाद श्रोताओं चलिए फिर से जारी रखते हैं आज के कार्यक्रम को। अगला है फाइट ऑफ थोरा क्राउन और रूट रॉट। फाइट ऑफ थोरा क्राउन और रूट रॉट युवा पौधों के साथ साथ जड़ और क्राउन उत्तकों के सड़ने का कारण बनता है। कभी कभी पत्तियों पर दाग लग जाता है, पौधों में अचानक और स्थायी रूप से मुरझाहट आ जाती है और शुरुआती लक्षणों के कुछ दिनों के अंदर पौधे की मृत्यु हो सकती है। जड़ों और निचले तनों में हल्के से गहरे भूरे रंग का मलिन किरण विकसित होता है। प्रभावित उत्तक नरम और पानी से लथपथ हो जाते हैं। अंत में जड़ प्रणाली पूरी तरह से सड़ जाती है। फाफुन जैसा रोगजनक फलों की सड़न का कारण भी बन सकता है, जिसके लक्षण खेत में या फिर कटाई के बाद शिपमेंट या भंडारण के दौरान विकसित होते हैं। ये पानी के छींटे और हवा के बहाव से फैलता है। ये बीमारी आमतौर पर भारी बारिश या फिर सिंचाई के बाद और खेत के निचले या खराब पानी निकासी वाली क्षेत्रों में होती है, जो कई दिनों तक गीले रहते हैं। फाइटोफ्थोरा क्राउन और रूट रॉट की को सिंचाई प्रबंधन, अच्छी जल निकासी वाली जगहों का चयन, फसल चक्र, स्वच्छता और संभवतः कवक नाशकों का उपयोग के संयोजन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। उभरी हुई क्यारियों या फिर ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने वाली प्रणालियों में इस बीमारी के विकसित होने की संभावना कम होती है। रोग के लक्षण दिखते ही कवक नाशकों का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कई कवक नाशक उपलब्ध है। पाउडरी फाफुंद ऊपरी और निचली पत्ती की सतह पर, साथ ही डंठलों और तनों पर सफेद पाउडरी वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। पाउडरी फाफुंद अक्सर सबसे पहले पुरानी निचली पत्तियों और पुराने फल देने वाले पौधों पर विकसित होती है। संक्रमित पत्तियां समय से पहले मुरझा जाती हैं और मर जाती है। खीरे के फल भी पाउडरी फाफुंद से संक्रमित हो सकते हैं। रोगजनक कद्दू वर्गीय फसल या खरपतवार प्रजातियों पर ये फाफुंद जीवित रहता है और ये बीमारी वर्ष में किसी भी समय हो सकती है। पाउडरी फाफुंद तेजी से वृद्धि करते हैं और जैसे जैसे पौधे घने होते हैं तो इसमें संक्रमण ज्यादा होता है। पाउडरी फाफुंद को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। पाउडरी फाफुंद के प्रति मध्यम स्तर की प्रतिरोधकता वाली किस्में उपलब्ध है। उन क्षेत्रों में खरपतवारों को नियंत्रित करें जहां रोगजनक पौधे लगे हों। रोग के पहले लक्षणों के लिए फसल की निगरानी रखें। जिस समय एक कवकनाशी स्प्रे अपनी फसल को बचाने के लिए अलग अलग विधियों वाले कवकनाशी का उपयोग करना जरूरी होता है। तो श्रोताओं, हमने आपको रोग और कीट के बारे में जो जानकारियां दी है, साथ में कुछ दवाइयों के नाम भी बताए हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके खीरे की खेती में ऐसा कोई कीट या रोग लग रहा है तो फिर आप विशेषज्ञ की सलाह लें और इसी के अनुसार आप उसका समाधान करें। खीरे की खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छे से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को जुताई करके मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत की मिट्टी के सूखे दिखाई देने पर एक बार फिर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। खीरे के बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार करके मेड़ के बीच में NPK की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है। जिसके अलावा खेत में पौधों को लगाने के 30 दिन बाद एक एकड़ के खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव किया जाता है और इसके 40 दिन बाद फिर से 20 kg नाइट्रोजन का छिड़काव कर दें। इससे पैदावार अच्छी होती है। श्रोताओं, खीरे के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। खीरे की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर लगाई जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के महीने में उगाया जाता है और दक्षिण भारत में इसे नवंबर के महीने में लगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई खेत में तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ी मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके अलावा अगर किसान भाई बीजों की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में 1 फीट गहरी नालियों को तैयार कर लें। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों को लगा दें। खीरे के साधारण किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 केजी बीज की ज़रूरत पड़ सकती है और संकर किस्मों के लिए 2 केजी बीज काफ़ी होता है। खीरे के पौधों की सिंचाई। खीरे के पौधों को अधिक सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए पौधों को केवल 3 से 4 सिंचाई की जा सकती है या फिर इसे इनकी ज़रूरत के अनुसार इनकी सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। बारिश के मौसम में इसके पौधों की सिंचाई ज़रूरत पड़ने पर ही करें और सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में एक बार पानी देना होता है। खीरे के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खीरे के पौधों में खरपतवार नियंत्रण। खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों को सिर्फ 2 से 3 गुड़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन बाद की जाती है।
1: श्रोताओं, खीरे की फसल बीज रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है। जब इसके पौधों में लगे फल आकर्षक दिखाई देने लगे तब इनकी तुराई कर ली जाती है। किस्मों के आधार पर इसके फलों की तुराई 1 से 2 दिन के अंतराल में कई बार की जाती है। अलग अलग किस्मों के आधार पर खीरे की फसल से 4 से 16 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। खीरे का बाजारी भाव 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल होता है, लेकिन ये भाव मार्केट और जगह के ऊपर निर्भर करता है, जिससे किसान भाई खीरे की एक बार की फसल से 1 लाख से अधिक की कमाई कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। श्रोताओं, खीरे की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट एवं बलुई दोमट भूमि उत्तम मानी जाती है। खीरा की खेती के लिए भूमि का पीएच 5.5 से 6.8 तक अच्छा माना गया है। नदियों की तलहटी में भी इसकी खेती अच्छी पैदावार देती है। बगीचों के लिए भी ये फसल उपयोगी है, जो कि आसानी से बोई जा सकती है। अधिक लंबी बेल एवं बढ़ने वाली किस्मों को चुने तथा अपने खेत को ठीक प्रकार से खोदकर समतल करें और देसी खाद मिला देना अच्छा होता है। खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर तैयार करें।
0: तो श्रोताओं, खेत की तैयारी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। खीरे की फसल के लिए खेत की कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी फसल के लिए खेत की तैयारी भूमि के किस्म पर निर्भर करती है। बालुई भूमि के लिए अधिक जुताई की जरूरत नहीं होती है। 2 से 3 जुताई से ही खेत तैयार हो जाता है। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर क्यारी भी बनाई जा सकती है। भारी

0: भूमि की तैयारी के लिए अधिक जुताई की जरूरत पड़ती है। बगीचे के लिए ये फसल उपयोगी है जो कि आसानी से बुआई की जा सकती है। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की खरपतवारों का नियंत्रण पाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह खीरे की भी अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को खरपतवारों से साफ रखें। इसके लिए गर्मी में 2 से 3 बार और बरसात में 3 से 4 बार खेत की निराई गुड़ाई करें। लता के वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में निराई गुड़ाई करने से पौधों का अच्छा विकास होता है और फलन भी ज़्यादा होती है। लता के पूर्व वृद्धि के हो जाने पर बड़े बड़े खरपतवारों को हाथ से आसानी से उखाड़ा जा सकता है।
1: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
2: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
3: वो कैसे?
2: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
4: ये किसका नंबर है भाई?
2: किसान कॉल सेंटर का, जहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
5: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा?
2: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
4: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
2: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
6: सच
2: 16 आने सच।
7: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
8: सताओ, आइए अब कुछ बातें करते हैं पोली हाउस में किस तरह खीरे की खेती की जाती है इसी संदर्भ में। किसान भाइयों, वैसे तो सामान्यतः खेत में खीरे की बुआई सीधी की जाती है, परंतु पोली हाउस में फसल साधारणता बढ़ाने के लिए प्रोट ट्रे में पौधे तैयार किया जाती है। मौसम के अनुसार खीरे की पौधे 12 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। जब पौधों में बीजों पत्रों के अलावा 2 पत्तियां आ जाती है तब पौधा स्थानांतरण योग्य माना जाता है। कैरियो की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं वाई पाली हाउस के आकार के अनुसार रखी जाती है। 2 बेड के बीच में 60 सेंटीमीटर पथ रखा जाना चाहिए। खीरे के बीज का तैयार करने की वैज्ञानिक विधि, खीरे की खेती के लिए नवंबर के महीने में प्लास्टिक के गिलास में मिट्टी भरकर बीज अंकुरित करने के लिए डालते हैं। 2 माह बाद खेतों में रोपाई की जाती है। बीज तैयार करने का यह वैज्ञानिक तरीका भरपूर उत्पादन देता है। खीरे की खेती से अच्छी आमदनी के लिए किसान हाइब्रिड प्रजाति को प्रमुखता देते हैं। पोली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब्जी एवं फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त एवं नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें किसान बेमौसमी सब्जियों या फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि खुले खेतों में मौसम के अनुसार ही किसान खेती कर पाते हैं। बेमौसमी सब्जी उत्पादन होने से जहां किसानों को अधिक लाभ होता है, वहीं लोगों को बेमौसमी हरी ताज़ा सब्जियाँ खाने को मिल जाती है। पॉली हाउस एक संरक्षित एवं फ्रेम युक्त संरचना होती है। ये स्टेबिलाइज्ड कम साधनता वाले पॉलिथीन अथवा पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीटरोधी नेट से ढकी होती है। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा लिया जाता है। फव्वारा या ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर उसे मौसम के अनुकूल बना दिया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दा गिरा दिया जाता है। इससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार किसान बेमौसमी सब्जियां एवं फूलों की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पारद पोषक तत्व आदि को नियंत्रित किया जाता है, ताकि वांछित सब्जी फसलों का वर्ष भर उत्पादन किया जा सके। नियंत्रित जलवायु और मृदा परिस्थितियों से पॉली हाउस में उगाई गई सब्जी एवं फूलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। श्रोताओं, आइए अब कुछ बातें करते हैं पॉली हाउस का लाभ के बारे में। खुले खेत के मुकाबले पॉली हाउस में उत्पादकता 3 से 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसमी फूलगोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। इसके अलावा फूलों की भी बेमौसमी खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ जाता है, लेकिन बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। इसमें कीटों एवं रोगों का नियंत्रण आसानी से 100% किया जा सकता है। सब्जियों एवं फूलों की गुणवत्ता बनी रहती है तथा बाजार में अधिक भाव मिलता है। छोटी जोत वाले किसानों के लिए पॉली हाउस अधिक फायदेमंद है। तो श्रोताओ, ये थे थोड़ी सी जानकारी किस तरह पॉली हाउस में खीरे की खेती की जाती है इसी विषय में।
0: तो श्रोताओ, इसी के साथ हम आज के इस विषय यानी खीरे की खेती के बारे में हमने आपके साथ जो जानकारियां बांटी हैं, तो इस जानकारी को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आ चले हैं आज के कार्यक्रम के अंत तक। जाने से पहले हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर बांटे। बांटने के लिए आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 03673-2999-05। कॉल करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, या फिर आप सीधे हमारे कार्यालय में आके हमसे मिल भी सकते हैं कार्यालय के समय पर। तो इसी के साथ आज की किसान वाणी की इस कड़ी को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं मिलिडी
8: और मैं आपका दोस्त शांतनु आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।
1: किसान वाणी प्रायोजक थे भारत सरकार की कृषि मंत्रालय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशनवाणी कार्यक्रम, जिसे पेश कर रहे थे शांतनु और मिलोडी। आकाशवाणी के हफलंग केंद्र है, आइए आनंद लेते हैं फिल्मी संगीत का।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया की

0: भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृहमंत्री

0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

आकाशवाणी के हफलंग केंद्र है श्रोताओं, अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप ही के एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम आपके गीत। पहला गीत आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म से। गीत को गा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक। गीत को लिखे हैं समीर और अनजान ने और संगीत दिए हैं नदीम शवन ने। इस गीत के लिए हमारे पास एसएमएस आया है देवीनगर हफलोंग डिमाहसाव से। इस गीत को सुनना चाहते हैं जमुना छेत्री और उनके दोस्त।

अगला गीत श्रोताओं ये सुनते हैं चांदनी फिल्म से श्रीभरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे ये गीत को गा रहे हैं सुरेश वाटकर और अनुपमा देशपांडे। ये एसएमएस हमारे पास आया है सिविल लाइन रोहतक हरियाणा से, सुनना चाहते हैं आशु मानसी दीव और ललित अरोड़ा। आइए सुनते हैं आपके पसंद के ये गीत।

इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आए हैं पतिल नगर मौलाउट पंजाब से। सुनना चाहते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया और अर्जु जजूरिया और गुड्डू। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्रा। गीत गा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश। गीत की धुन दिए हैं कल्याण जी, आनंद जी ने और

अगला गीत सुनने से पहले हम श्रोताओं को कहना चाहते हैं, श्रोताओं अगर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना चाहते हैं तो हमें SMS या व्हाट्सअप ज़रूर करें। SMS या व्हाट्सअप करने के लिए टाइप करें गाने के बोल, फिल्म का नाम, अपना और अपने साथियों के नाम, और इसे भेज दें इस नंबर पर 9435700596। नंबर फिर से एक बार 9435700596। अपना पता ज़रूर लिखें, हमें आपके SMS व्हाट्सएप का रहेगा इंतज़ार। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहरा फिल्म से। गीत को गा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। बिजू शाह ने धुंधे इस गीत को लिखे हैं आनंद बख्शी ने। ये SMS हमारे पास आया है कुदाली नागेंद्र नगर श्रीभूमि असम से। सुनना चाहते हैं हितेंद्र दास, मीनाल, विमल, दुर्गेश, रिकवेलिक, शिवा, नारायण, महाराज, रमेश, भाईकोन और अमल। ताई सुनते हैं आप सभी के पसंद का ये गीत।

आपके गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म से। गीत को गा रहे हैं शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति। एस एच बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आए हैं बिहारा पार्ट 4 डिस्ट्रिक्ट कछार से। सुनना चाहते हैं तरुण, राधा, रौनक, ऋषभ और अरुण सिन्हा। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद का ये गीत।

आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत।

ये गीत श्रोताओं सुन रहे थे गुरु फिल्म से, गीत को गा रहे थे ए आर रहमान, श्रेया और उदय। अगला गीत आइए सुनते हैं अग्निपथ फिल्म से अजय गोगावाले की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं और इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल पहली सभा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।